एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चेहन अर वर्ण जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख भेख कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहे जाय कोट इंद्रंद्राण साह सहान गणिज त्रिपावन महीप सुर नर असुर नीत नीत मंत्रण कह सर्वनाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत समत अब राखो दास पाट की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फोन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहुसाज सुदामा आपदा तिराख्या गणका पड़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सु प्रसन्न कल जग होए रख हो दास पाट की लाज निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा ढाकन हारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अविनाशी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख बधाते उस्तत कह न जाए तुम्हारी कौन कह तू कद नानक दास ताकै बलिहारी मिला नाम हर निमका चिंत भवन मन भरयो हमारा नाम बिना कैसे उत्तर सपारा देह बिमल मत सदा शरीर सहज सहज गुण रवै कबीरा मैं ना ही कछ हौं नहीं किस आहे न मोरा अवसर लज्जा राख लिहो सदना जान तोरा सो कहो टल गुर सेवी है एहन सुसहज दर्शन।

अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग माण साचा साहेब साध मेहरबान मंद पाया मेरा सतगुर पूरा होई सर्व कल्याण रहा जियो पाई पिंड जिन साजिया दिता पहनण खाण अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुरबान जियो पाई पिंड जिन साजिया दिता पैनन खाना

0: पौड़ी वड्डी हूँ डाया पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सबकी जान ला सबकी तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर नंद वधाई तुझ घर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दुसरा दुदाई दाया खेले सगल जगत

निरंजन हर पुरख निरंजन हर गुम युगम पारा सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सृजन हारा सब जीव तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर

तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ती पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया, चुन चुन शत्र हमारे मारिया। आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करियो रक्षा। राख लियो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब

नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो कट कट के अंत

दुष्ट दोख तेल हो बचाई, खड़ग के तमै शरण तिहारी, आप हाथ दल हो बारी, सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख तेल हो बचाई। सवैया पाए गहे जबते तुमरे, तबते को आँख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो,

आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया, सहज सेती मन वजियां वादाहियां।

अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सदारो जी को खावे जी को पुंचाय तिसका हुए उदारो यह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया

जब लो नहीं पाग लीलार उदय तब लो ब्रह्मी फिरती बहुतायो कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब मिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संग

सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगदीश्वर है सर्ब रखिया गुर दयालह भय दुख विनाशन है भगत वशल अनाथ नाथे शरण नानक पुरख अचुत है।

0: साइड तो जब चलो सनी जी
1: चले चले। I'm going to ऊपर भी जाएगा, ऊपर जाएगा।
2: ¿Qué es lo que

अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत संबंधी नूर अरसो कुरसो चट्टी दुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी पट्टी है सज्जन सच्चा पातशाह इरशाह जिस पास बैठिया।

अष्टपदिया इको अंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन्हें उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वाथ सब जग जिन्हें उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वाथ किन कहिए क्यों देखिए पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाहिए पाई

शब्द मिलावण हार सच्चे चरण श्री वियह पाई ब्रह्म भव होवै नास मिल संत सबा मन मांझिया पाई हर कै नाम निवास।